0: बट या जो जो लोग गए हैं स्नो में आपने अगर देखा है सो एंजॉय मेगा मुझे।
1: धीरेन्द्र शर्मा जी कह रहे हेलो राधे राधे, नाइस प्रोग्राम, नाइस वॉइस। धीरेन्द्र शर्मा फ्रॉम रेकी रेकी, बहुत बहुत आशीर्वाद फॉर ऑल लिसनर्स एंड यू एंड योर फैमिली, प्ले नाइस सॉन्ग फॉर माय विलेज पीपल।
0: और वनिका वकलोवा से आप हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। रेकी रेकी, हाउज रेकी रेकी डूइंग? उषा जी, मैडम जी अभी आपको एक लिंक भेजेंगे
1: जी,
0: उस लिंक पर से यस जी।
1: उषा जी, हम हमारे पर्सनल फेसबुक से आपको मैसेज करेंगे ये शो खत्म होने के बाद, एंड हम आपको
0: उषा जी आप क्राइस्टचर्च में तो हो ना?
1: हाँ उषा जी, आप आर यू फ्रॉम क्राइस्टचर्च?
0: नहीं तो बाहर जाकर देख सकती है ना,
1: डू लेट अस नो।
0: ओके चले, आज जबकि हमने कल ये मूवी देखा है, बिजू अन्ना नमस्कार, अन्ना हाउ आर यू? अनदर बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, जो फिजी का जो त्रिकुट्टू ये नाच होता है उसमें कभी मारी माता बनते हैं, अलग अलग माता के वेश बनते हैं। सो बिजू वुड नो, ये जो त्रिकुट्टू जो फिजी का होता है, इट्स अनदर वर्जन जहाँ पर हम रामायण इस म्यूजिकल फॉर्म में जैसे त्रिकुट्टू में होता है डांस करते हैं, वो एक्ट करके दिखाते हैं, देन उसी में एक्टर्स आते हैं, लिटिल बिट ऑफ नरेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। सो या देयर वी गो। ओके चले, कल जबकि हमने ये मूवी देखा है पति पत्नी, और वो तो इस मूवी का हमें ये गीत भी बहुत पसंद आया। इस गीत में हम आप सभी को याद कर लेते हैं। लिस्टिंग टू रेडियो केजे लोकल,
1: ओनली ऑन प्लेन्स मीडिया।

0: सभी का हम फिर से रेडियो केजे पे स्वागत करना चाहते हैं। याद रखिएगा आज आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, हम आज का संडे का शो है, खास तौर पर से हम फोकस करते हैं रामायण पर। यस, जो 19 सितंबर को हो रहा है कैशमे हाई स्कूल इधर क्राइस्टचर्च से, तो आप आसपास से कहीं भी सुन रहे या 19 सितंबर को किसी कारण से अगर आप क्राइस्टचर्च जा रहे हैं, बुक योर टिकट्स नाउ बिकॉज यू डू नॉट वांट टू मिस इट, दिस वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जहां पर हमारे खुद क्राइस्टचर्च के कैरेक्टर्स, क्राइस्टचर्च के आर्टिस्ट, कुछ ऐसे लोग जो आज तक अपने लाइफ में कभी भी स्टेज पर शायद ही गए होंगे, दे विल बी ऑन द स्टेज एंड अपना जो टैलेंट है ये शोकेश करने वाले हैं।
1: जी, एंड दैट वाज द होल विजन एंड पर्पस ऑफ रेडियो केजे लोकल, क्योंकि काफी लोगों ने हम दोनों से पूछा है कि हम कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं या हम कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। बट रिमेंबर, जब हम कह रहे हैं कि रेडियो केजे लोकल का एक विजन था इस रामायण को लेकर के हम दूसरों को ये प्लेटफॉर्म दे और दूसरों को ये स्टेज दे, तो शायद आपको हम दोनों स्टेज पे नजर आए या शायद आपको हम दोनों स्टेज पे बिल्कुल भी नजर ना आए।
0: अगर आपको रामायण में से एक को एक आर्टिस्ट बनना है, विच आर्टिस्ट वुड यू, क्या आर्टिस्ट लोगे? डोंट लाइक नॉर्मली जैसे डोंट गो फॉर द आर्टिस्ट जो रिनाउंड आर्टिस्ट है, बट वेल एक्चुअली योर चॉइस, कौन सा एक आर्टिस्ट का अगर आपको आज चांस मिले या कहीं पर से कोई बोल रहे कि hey, चलो रेडियो कहे नहीं बट कोई और रामायण शो कर रहा है कि रामायण में पूरा, अभी तक तो आपको काफी लोगों को आपको पता चल गया रामायण में कौन कौन है, कौन सा आर्टिस्ट जाओगे?
1: अभी तक हम जो रामायण में देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम जो रोल लेना चाहते थे वो जटायु का रोल लेना चाहते थे।
0: You want to become जटायु?
1: I want to become जटायु, क्योंकि जो जटायु का जो करेज है, इवन दो बुजुर्ग होने के बाद जो वो सीता माता को बचाने के लिए जो जटायु करता है, एंड स्पेशली हमारे जो कास्ट है जटायु, आई थिंक उनको देखकर हमें ऐसा फीलिंग आ रहा है, वो गूज़बम्प जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिस तरह
0: से वो करते हैं ना। हाँ।
1: जी जी, काफी लोगों ने ये भी जटायु को देखकर कहा कि वो कैरेक्टर इतना अच्छा कर रही है कि उनको और रोल्स देने चाहिए थे। बट ऑब्वियसली हम सारे रोल सबको नहीं दे पाते थे, बट ऑब्वियसली आई थिंक जटायु का कैरेक्टर आई वुड हैव लव्ड लव्ड लव्ड टू डू इट। व्हाट अबाउट यू क्रिश जी, हनुमान के अलावा?
0: नहीं, I wasn't going to go for Hanuman. But अगर मुझे कोई कैरेक्टर करना है, which I think I can nail it, oh, I'd love to do it, but unfortunately शायद मैं उसमें उतना अच्छा नहीं लगूंगा। I would love to do Ravan's one.
1: रावण
0: का वो करना चाहूंगा।
1: wow. ये भी रावण के बारे में भी बात करें तो पब्लिक, हमारी क्राइस्टचर्च के लोगों, वी वुड से आपको ये रामायण नहीं मिस करना चाहिए। आज हम रावण का एक सेक्शन देख रहे थे, एंड जो हमारे रामायण के कास्ट है यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे रिका जी, दिलेश जी, सोनी दी हमारे साथ जुड़ जाती है, पर सोनी दी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उनको पता है कि हमारे जो रावण है, एंड आई डोंट थिंक ये चेहरा आपने पहले देखा होगा, जो हमारे लिसनर्स हैं उन्होंने ये चेहरा पहले नहीं देखा होगा। जो हमारे रावण का रोल कर रहे हैं वो भी जब स्टेज पर आते हैं, जब वो ऐसा फील होता है कि वो पूरी तरह उस कैरेक्टर में घुस चुके हैं, राइट? लाइक
0: जाते हैं, आई थिंक दैट्स हाउ यू शुड डू इट। जिन लोगों ने, अगर आपने थिएटर किया होगा या आपने कभी भी कोई रोल किया होगा, द बेस्ट वे टू शाइन इन दैट रोल इज कि आप उस रोल में कंप्लीटली ढल जाओ, लाइक यू गेट कंप्लीटली इनटू इट, एंड आपको सोचना है कि इट इज दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन द स्टेज, ओनली देन आपके अंदर से वो टैलेंट निकल के आएगा। इफ यू आर ट्राइंग, इफ अगर आप उस एक्टर को मिमिक करोगे, जैसे अगर कोई रावण हो, आप रावण को मिमिक करोगे, देन यू विल बी डूइंग वट लाइक के ने, पर अगर इफ यू गो ऑन दैट स्टेज और उतने देर के लिए, या आप जटायु का आपने देखा होगा, शी फॉरगेट्स कि वो जटायु का मिमिक कर रहा है, उनके लिए शी इज जटायु।
1: एंड ये हमें ना वापस ले जाता है कीवी इंडियंस थिएटर में, जब हमने बेकर स्ट्रीट किया था, क्योंकि आपको पता है कि हम घर पे वैसे एक्ट करने लगे थे, हम घर पे वैसे बिहेव करने लगे थे, क्योंकि वो रोल में जो इमर्स होना है, अपने आप को वो रोल बनाना पड़ता है,
0: उसमें जाना है, एंड देन ओनली देन
1: यू हैव टू फील दैट रोल। सो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, वी कुड सी इट टुडे के दे हैव स्टार्टेड टू फील दैट रोल। ऑब्वियसली 5 महीने का ट्रेनिंग या 2-3 महीने का ट्रेनिंग है, और 2 महीने का ट्रेनिंग बचा है, तो जब तक वो स्टेज में आएंगे, आप लोग जो ऑडियंस देख रही होगी ना, I can surely say के it will be feast to your eyes, definitely.
0: Yeah, and the good thing is, देखो जैसे कभी कभी कुछ कुछ, जैसे जीबी ने कीवी इंडियन वो mention किया, तो it was the entire thing was in Malayalam, right? उसमें it like जो लोग मलयाली बात कर रहे हैं, and all that, we also went to support it, क्योंकि there was like we wanted to, of course, with characters. पर इसमें क्या है कि हमारा इसमें, although it is in Hindi, पर हमारे साथ मलेशिया, श्रीलंका, श्रीलंका ने हमारे साथ कोई
1: श्रीलंकन,
0: मलेशिया,

0: शादी कर सकते हैं।
1: क्वीन विक्टोरिया की
0: तरह? क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे देख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी मलिका तिलफरिया।

0: Happy Sunday one last time before we head off Chibi. So खास तौर पर से जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उधर काश अजमेर प्रिजन से जितने लोग जुड़े हैं आपको भी हम याद कर लेते हैं, बाकी भी जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे. एंड Chibi जी बस अभी से यहाँ से निकलना है और 4 weeks तक हम इस माइक के सामने नहीं बैठेंगे. आपको कुछ बोलना है हमारे लिसनर्स को?
1: हम आप लोगों को मिस करेंगे एंड हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमें मिस करो. बट यस, जो हमें फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं हम फेसबुक रेडियो के जे लोकल पर पोस्ट जारी रखेंगे, पोस्ट करते रहेंगे. हमारा जो ट्रिप है दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय इको ट्रेवल्स, सो अ शाउट आउट टू इको ट्रेवल्स. बट हाँ, फोर डेज नहीं, क्या बोलते हैं, फोर शोज हम आपको मिस करेंगे. तब तक के लिए बस आप हमें याद रखना, हम आपको याद रखेंगे.
0: अविस मुदलियार हमारे साथ ज्वाइन इन हो गए उधर टीम रानी मुदलियार जो इधर क्राइस्टचर्च जा रहे हैं एक शो करने के लिए. तो अविस जी आपको, रानी जी को और निमित यहाँ हमारे क्राइस्टचर्च के जो एक टैलेंटेड कलाकार है, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट हम कहना चाहेंगे. हमने रेडियो के जे की तरफ से भी एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के नाम पे करके पोस्ट किया है. चलो गाइज, दैट्स इट रेडियो के जे की तरफ से. हम आपसे मिलेंगे आफ्टर 4 shows. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. दिस इज host RJ Krish signing off with a very beautiful, with a very gorgeous
1: RJ Jibby. Bye.